ब्रह्मा मुरारी स्थिपरंतकारी भानो शशि भूमि सुतो बुधस् गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा।

0: रेडियो साइनो 89.8 मेगाहर्ज तपाईं हाम्रो अटुट साइनो
1: सब्सक्राइब नाउ एन्ड प्रेस द बेल आइकन नेभर मिस एन अपडेट फ्रम टिप्स अफिसियल